के बहुत नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इना बचना का उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेह किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदियां तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करते ने बख्शिश करते ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहते ने

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत सब सानू दसते ने किते जातक नू वेख ले पपीए नू वेख ले जेड़ा स्वाति बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदे सब बाणी विच कहिंदे ने

शिव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पाछा तू मेरे ते कृपा कर। किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मींह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहंदे ने

शायद की रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक के गुणा का अथाह बयान करते हुए अपने रचना तो कृपा करते ने ते आंदे ने

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार दिन तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत भयारे, ये मेरिया मालका एक घड़ी भी एक पल भी, तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एटी प्यास है तेरे दीदार दी, एटी आस है तेरे दीदार दी, निरे मालका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा च तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंद ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर ले जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चातक ने पपिए ने स्वाती बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है। जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह, मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़े।

0: तेरे को सत बजन नहीं कहा जाता आखो सत
1: केंद्र एक बार असी कह बैठे लेकिन लेकिन लेकिन बाबा जी ने फिर ताड़ना की केंद्र बिल्कुल ठीक लेकिन कितने लिखे गुरु ग्रंथ साहब आखो साधना गुरु ग्रंथ साहब के कितने लफज नचोड़ कढ़ो गरीबी की पढ़ाई गरीबी सत बचन की पढ़ाई निम्रता की पढ़ाई कहन लगे सानू कहंदे फारसी सिख गया लेकिन बिल्कुल ठीक इत्थे ते सत बचन दी पढ़ाई कोई गल कहनी सत बचन जी अच्छा जी सत बचन जी एडी बरीकी कढ़ दे कि लफजां च भी गरीबी

सब तन का गुण सतगुण गुण सतगुण जित मिल हर पैदा तू कर्म कर्म समर्पण करे मैं कुछ दिन अगर

कश्मीरी नदी के किनारे से दुनिया नु तारन वाला मेरा धन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

निरोल अमृत बाणी का रस पीता है तो खुशकिस्मत है। गुरु नानक देव दर ते सदा ही अमृत रस है पर पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं। जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पैर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे। फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे। बाबा ईसर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते सन दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी। पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनू पकाइए ओदे वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा। सरसों कितों उगदी बड़ी मेहनत। फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट दी लोड़ ओदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी। फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा। ए सोहना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा जगे भाई जग गया दीवा ते लोकी आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदे पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक दे दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रसना पवित्र करो सेवक दे कन सफले करो प्यार नाल आखो सतनाम। जो गुरु दे प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबों कुछ दिता है साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार ली बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखमीदास तुसी बाहर चले जाते हो ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं। कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी अगला भी कोई बापू दूजिया के बापू अपने बच्चिया मठियाईया लिया के दें खिलौने लिया के दें तरह तरह की चीजा लिया के दें बेबे साडा भी कोई बापू। वीर ने इन्हों छाती ना ला के कहनी है पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है पर वीर हुण ना जा हुण ना परदेसा नूं जा तो प्यारी सात संगत परवकारी दाता जी दोवे बच्चियां नूं श्री चंद ते लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानू ठा दिता। पुत्र जगत दा मिठा मेवा है प्यारे पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती फर जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रां नूं उठा के ते बेबे वल मुखातब होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पाल सी सारिया नू जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहे बेबे मेरे निरंकार रब नाया संसार दुनिया दुखी है काम को लो मोहंकार दी अगली साड़ी बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो यही दात बनती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत में ले तो पीछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा लो। बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है तो इतों कुछ नहीं ले जाता तो जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं पढ़ता। बाबा जी कहते सन और गुरु की दगा का चोर तो जरा गज के बोलता है तो गुरु नानक के दर से हाजरी लग जाती है गुरु नानक हाजर नाजर बैठा आप लगवाओ हाजरियां साडा गुरपुरब मनाया सफला हो जाए प्यारी साध संगत पहले सेवक बोले पिछले सारी संगत।

इस अमृत नु प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम्बर से अमृत धारा मन पीड़े सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द नु सुने कन्ना नु कटोरे बना के

समझमान जो गुरु की संगत जियो, दो जहान मालक शब्द गुरु की पावन हजूरी विच जो बैठे हो, भागा वाले हो, जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी रूहानियत दे पुंज हैं, उथे संगीत दे सोमे भी हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी आबादक दे नाल नाल संगीत दे महान सम्राट भी हैं। मोस्टली बाणी रागां अते तालां विच है। मैं तो ऐसा समझदा हां कि जिवें शब्द गुरु है, संगीत सिख है। सिख ते गुरु दा सुमेल होना बहुत जरूरी है। सिख

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथों दी, मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी, सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पा

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वडियाई है या गुरमुखां दी वडियाई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हास्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम। तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजयाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके

बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने विपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन, द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन, अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन, सुख दिंदे हन। ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया, इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, इस सदाउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा, ते एदी पत्नी नूं ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ऐ सुदामा, तू जगदीश नूं मिलते सही, वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब, इसे मित्रता दियां निशानियां नूं दसदे होए अगे फरमान करदे हन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा है। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन,

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती है। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा है, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के, मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लैके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लैके सिंघासन वल वधे।

सिख का अर्थ ये है भी सिखी सिक्ख्या लैन वाले नु सिख फिर जड़ा हर वेले सिखदा रहे ओ सिख सिख नाम ही उसे रहे जो हर वेले सिखदा बाबा जी बख्शिश करदे सन बचना द्वारा सिख माया धारी हो जावे तां वी सिख जे राजा महाराजा बन जावे तां वी सिख जे संत बन गया तां वी सिख सिख की सिख भाई गुरु की सिख्या सिख आखो श्री वाजी सिख नाम ही विद्यार्थी है सिख का अर्थ स्टूडेंट क्योंकि सीखने वाले में कुछ मिलता है जड़ा कहता मैं सिख लिया है उन्हें कुछ नहीं सीख बाणी चाहे सो अजान कहे मैं जानना वो अजान जिस जड़ा कहता मैं जान ले कहती सारी दुनिया काट न करी कहाया सब कहते हैं पर पता उस वेले लगता है जिस वेले वेखिए मन की खारिज कितनी की वस्तु है कोई है ही पटारी कि खाली पी है सकनी पी तो जिसने जाने वो कहता नहीं सो अजान कहे मैं जाना जानन हार न छाना रे काहे रे बकबाद लायो नामदेव जी कहते हैं पंडतों मुखातब करके काहे रे बकबाद लायो जिन हर पायो तिने छुपायो कहते उन्होंने कहने की लोड़ ही नहीं जिहड़ा कहता ओदे कोल कुछ कह कबीर छूछा कट बोले कह कबीर छूछा कट बोले परिया होया सो कबू ना दो तो जिहड़ा कहिंदा मैं जाने है उन्हें कुछ नहीं जाने तो जिसने जाने है वो कहिंदा तो सिख ने सदा ही जाने गुरु का सिख जो है बाबा जी बचन करते सन भाई सदा ही सिखदा रहो फिर की सिख केड़ी सिख्या सिख गुरु की सिख्या सिख गुरु की हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाली गुर चाली सदगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली गुरु की चाली चाली जे तू गुरु का सिख है तो गुरु की चाली चाली जे तू गुरु की प्रसन्नता लेनी है तो गुरु की चाली चाली फिर गुरु की चाली केड़ी है